0: आजकाल भारतातल्या गावोगावी गच्चींचं रूप बदलून गेलंय. जिथे आधी फक्त पापड आणि कपडे वाळत घातले जायचे, तिथे आता वीज बिल शून्य होत आहे. गावोगावी लोक सोलर पॅनल बसवतायत. तुम्ही बसवून घ्या. भारत सरकार तब्बल 78,000 सबसिडी देते. 30,00,000 अधिक कुटुंबांनी तर आधीच याचा फायदा घेतलाय.
1: पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना. सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा pmsuryaghar.gov.in वर.
2: हर घर सूर्यघर.
3: प्रवेशासह करिअरची सुवर्ण संधी. तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित तेरणा कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय धाराशिव विथे
4: 12वी पास ना BCA, 12वी सायन्स पास ना BSc कॉम्प्युटर सायन्स, BSc जनरल तसेच BCom BA, MSc कॉम्प्युटर सायन्स, 11वी आर्ट व कॉमर्स शाखेत प्रवेश देणे सुरू.
3: विद्यापीठातील पहिले संगणक शास्त्र महाविद्यालय. ब्रॉडबँड इंटरनेट सह सुसज्ज 3 कॉम्प्युटर लॅब. VC द्वारे गेस्ट लेक्चर सुविधा. उच्च विद्याविभूषित प्राध्यापक वृंद.
4: शासनाच्या करिअर कट्टा उपक्रमाद्वारे मोफत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सुविधा. मागासवर्गीय अल्पसंख्याक व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासन नियमानुसार शिष्यवृत्ती.
3: संपर्क प्राचार्य डॉक्टर DB मोरे सर, तेरणा महाविद्यालय, MIDC परिसर, धाराशिव. मोबाईल 94-22-92-96-78, 94-21-358-408 आणि 94-21-36-10-71.
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडिओ तेरणा 90.4 FM. आपली माणस आपला आवाज. सबसे पहले आपको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं शिवम पांडे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तुलजापुर का छात्र हूं. मैं बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूं. मुझे आज रेडियो तेरना ने यह अवसर प्रदान किया है कि मैं आप लोगों के पास अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं और हमारे इस स्वतंत्रता के संग्राम के पावन अवसर पर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं. और कैसे ये संघर्ष हुआ, कैसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन किया इस देश की आज़ादी के लिए, मैं उस बारे में आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ. भारत, जो कि सोने की चिड़िया के नाम से पहले से प्रसिद्ध है, उस पे हमेशा से बाहरी विदेशी आक्रांताओं की नज़र रहा है. हम अगर बात करें स्वतंत्रता की लड़ाई की, तो ये शुरू होती है तब से नहीं जब से अंग्रेज आए. ये लड़ाई उससे काफ़ी पहले से शुरू की गई है, जब अरब मुसलमानों द्वारा भारत पे आक्रमण हुआ. हम इतिहास के पुराने पन्नों में मैं आपको अब ले चलता हूँ, जहाँ पे हम पुराने कुछ अनसुने अनकहे तथ्यों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, जिससे कम लोग अवगत हैं. तो आइए चलते हैं 712 से पहले. 712 से पहले जब इस्लाम अरब देशों में फैला, तो अरबी सेनाएं, जो कि प्रोफेट और उसके बाद उनके खलीफाओं के आदेश मानते हुए हिंदुस्तान की सरजमी की ओर बढ़ती गई, उस समय की ये बातें हैं. लेकिन उस समय अरबी सेनाएं इतनी मजबूत नहीं थी कि हमारे देश पे परमानेंट शासन कर सके. तो उस समय के छोटे मोटे लूटपाट करके वो लोग वापस चले जाते थे. लेकिन जो पहला हमला पहले खलीफा ने सैंक्शन किया, वो था 712 में, जिसमें उसने अपने भाई मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेजा यहाँ पे लूटने के लिए. अरब, जैसा कि आप जानते हैं कि रेत है, खंडहर है, उस ज़माने में वहाँ पे कुछ नहीं था, तेल का बिल्कुल कोई आविष्कार नहीं हुआ था वहाँ पे, तो गरीबी काफ़ी थी. और भारत सोने की चिड़िया थी, तो हमेशा से विदेशी आक्रांताओं को हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है. तो 712 में जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, तो उसे सिंध में हराया गया. दारा राजा दाहिर, जो सिंध के राजा हुआ करते हैं, वो पहली बार तो हारे, लेकिन बाद में उनके बेटे ने उनका बदला लेते हुए मोहम्मद बिन कासिम को मार के भगाया. उसके बाद अरब सेनाओं द्वारा एकदम से हिंदुस्तान पे आक्रमण बंद हो गया, क्योंकि अरब सेनाएं इतनी बुरी तरह से हारी थी. अब आता है तुर्कों का समय, जब इस्लाम तुर्कों में फैला, तो तुर्कों के अंदर एक जज्बा जगा इस्लाम को दूसरे ज़मीन पे, खासकर हिंदुस्तान की तरफ फैलाने का. तो ये युद्ध शुरू हुआ मोहम्मद गजनी, जो गजनी के मोहम्मद के नाम से जाने जाते हैं, गजनी का मर्तबा लेने के लिए, यानी कि जो इस्लाम का ज़्यादा प्रचार करता है उसे गजनी का मर्तबा दिया जाता है. तो गजनी के मोहम्मद ने ग्यारहवीं शताब्दी में, जो कि एक तुर्क थे। उन्होंने 1001 में पेशावर पर हमला किया। पेशावर में हमला करके उन्होंने पेशावर, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, और उस समय वहाँ पर एक शाही करके राजघराना था, शाही डायनेस्टी थी जिसका राज चलता था, और ये डायनेस्टी पूरे अफगानिस्तान पे और पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पे इनका राज चलता था। तो साल 1001 में गजनी के मोहम्मद ने शाही डायनेस्टी के जयपाल करके एक राजा हुआ करते थे, उनको हराया। उसके बाद गजनी की सेना वहीं नहीं रुकी, गजनी की सेना बनारस में गई, मथुरा गई, उज्जैन गई, सोमनाथ गई, द्वारका गई, और इन्होंने यहाँ पे हजारों हजार मंदिरों को तोड़ा, उसकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया, लूटपाट की, हमारे देश से करोड़ों करोड़ रुपए उन्होंने अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। गजनियों ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई और लाहौर से उन्होंने अपना शासन चालू किया। अब मोहम्मद गजनी के बाद दूसरे जो इन्वेडर आए ये थे मोहम्मद घोरी। मोहम्मद, इन्हें मोहम्मद ऑफ घोर भी कहा जाता है, जो घुरिद डायनेस्टी या घुरिद एम्पायर की स्थापना करने वाले थे। यहाँ पे 1186 में मोहम्मद घोर के मोहम्मद ने गजनवियों को हरा के लाहौर छीना और वहीं पे गजनवी डायनेस्टी का समापन हुआ। 1186 के बाद से लाहौर में घुरिद एम्पायर शुरू हुआ और फिर इन्होंने आक्रमण शुरू किया हिंदुस्तान, जो आज का हमारा भारत देश है, भारत मेनलैंड पे। तो इस लड़ाई के दौरान दिल्ली से लेके अजमेर तक हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन चला करता था। पृथ्वीराज चौहान, जो कि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान नाम से जाने जाते हैं, उनको किताबों में पृथ्वीराज थ्री के नाम से भी जाना जाता है। तो जब मोहम्मद घोर थे, जब उनकी सेना जलंधर के पास पहुँची, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना लेके, एक राजपूतों का कॉन्फेडरेशन लेके, तराइन के मैदान में, जो कि जलंधर के पास है, तराइन के मैदान में युद्ध लड़ा 1191 में। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद घोर की सेना बहुत बुरी तरह हारी और मोहम्मद घोर को जिंदा पकड़ लिया गया। मोहम्मद घोर ने माफ़ी मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती हुई। बाद में अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद घोर ने बहुत एक मजबूत सेना पश्तूनों की खड़ी की, तुर्कों को, पश्तूनों को, और भी जो अफगानी ट्राइब्स हैं, इनको इकट्ठा किया और तराइन के दूसरे युद्ध के लिए वो आए। तो जब इन्होंने अपना एक एनवॉय भेजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, तो उस समय जो एनवॉय आया वो दरबार में आके बोला कि मोहम्मद घोर की तरफ से ये पैगाम है। तो उसके मुंह से निकल गया कि मोहम्मद घोर की जगह निकल गया गोर। तो राजपूत सेना, जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी, वो पूरे लड़ाई के समय ये चिढ़ाती रही कि अफगानिस्तान की गोरी। तो मोहम्मद घोर को वो बोलने लगे अफगानिस्तान की गोरी। ये सुनकर अफगान सेना, जो घोर के नेतृत्व में थी, वो काफ़ी गुस्सा हुई, और दूसरा थोड़ा हमारे पृथ्वीराज चौहान की सेना का ओवर कॉन्फिडेंस भी था। तो ये देखते हुए बैटल ऑफ तराइन दूसरा हुआ, जिसमें राजपूत सेना हारी, और हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को जिंदा पकड़ लिया गया। ये कहा जाता है कि मोहम्मद घोर ने उन्हें वापस पकड़ के घोर ले गए। घोर ले जाके उन पे अनगिनत प्रताड़ना की, उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वो भी झुके नहीं, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जाने जाते थे शब्दभेदी बाण चलाने के लिए, और ये शब्दभेदी बाण की बात जब मोहम्मद घोर के मोहम्मद को पता चली, तो उसने बोला कि मैं भी ज़रा देखना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान किस तरह चलाता है। उसी समय एक मौका मिला पृथ्वीराज चौहान को अपना बदला लेने का। तो पृथ्वीराज रासो, जो कि पहली किताब लिखी गई है शुद्ध हिंदी में, जिसके रचयिता हैं चांद बरदाई, जो कि खुद पृथ्वीराज चौहान के साथ उसमें फंसे हुए थे,

उस किताब में ये लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को चांद बरदाई ने इशारा दिया, और इशारा देते समय उन्होंने एक लाइन कही जो कि मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान है अब मत चूके चौहान। ये लाइन कहते ही पृथ्वीराज चौहान को अंदेशा हुआ कि सुल्तान किस दिशा में बैठा हुआ है, और सुल्तान बहुत जोर से हंस रहा था, उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो बाण चलाया वो मोहम्मद घोरी के मुंह को आर पार कर गया। इसके बाद यहीं पे मोहम्मद घोरी के साम्राज्य का अंत होता है। उसके बाद हम सल्तनत के समय में चलते हैं, जो प्रॉपर सल्तनतें हिंदुस्तान में दिल्ली से शासन करने लगी। तो सबसे पहला जो शासन चालू हुआ वो ममलुक का हुआ। ममलुक अरबी भाषा में कहा जाता है स्लेव को, नौकर को, जो बदले में पैसा नहीं लेता, सिर्फ खाना पीना लेता है। तो ऐसा ही एक स्लेव था मोहम्मद घोरी का, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद घोरी का कोई वारिस नहीं था, वारिस ना होने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका स्लेव था, तो उसके काफ़ी करीब था। तो मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने हाथ में पावर ले लिया और ममलुक डायनेस्टी की स्थापना की 1206 में। तो 1206 से लेकर 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित ममलुक साम्राज्य ने, ममलुक सल्तनत ने दिल्ली से शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दिल्ली में। इनके एक दामाद हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भी कुतुब मीनार की तरह एक इमारत खड़ी करने की कोशिश की। उनका सपना ये था कि वो कुतुब मीनार से ऊंची इमारत खड़ी करे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, और आज भी वो खंडहर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में ही टूटा फूटे हालत में पड़ा है। इन्हीं इसी सल्तनत में एक पहली महिला सुल्तान हमें मिली, रज़िया सुल्तान, जो कि 1216 से 1220 तक जिन्होंने राज किया, और वो अपने ही भाइयों द्वारा मार दी गई। अब हम चलते हैं ममलुकों के बाद खिलजी डायनेस्टी में। खिलजी डायनेस्टी जिनका शासन चला 1290 से लेकर 1320 तक, इसकी स्थापना करने वाले थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो कि अफ़गान थे, तो उनकी दुश्मनी थी ममलुकों से। हालांकि खिलजी ममलुक सेना के लिए काम करते थे, लेकिन अंदर से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके खिलजी वंश की स्थापना की। तो जलालुद्दीन खिलजी ने, वो फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं खिलजी साम्राज्य के, और उसके बाद उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने स्लेव मलिक काफूर से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाई। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, जिसका आतंक पूरे भारत पर था। अलाउद्दीन खिलजी वही है जो देवगिर पे हमला करके देवगिरी से कोहिनूर हीरा लेके आया था 1294 में। अलाउद्दीन खिलजी, इसने राजस्थान में राजपूतों पे भी आक्रमण किया, और ये दक्षिण भारत तक बढ़ते हुए तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्रों पे इसने हमला किया। इसका मेन इरादा जो होता था वो लूटपाट का ही होता था, और वो अपनी कोई परमानेंट जागीर उस इलाकों में बना नहीं पाया। अब खिलजी डायनेस्टी के बाद हम चलते हैं तुगलक डायनेस्टी में। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1413 तक रही। इसके फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने दिल्ली में एक शहर बसाया तुगलकाबाद नाम से। गियासुद्दीन तुगलक के दरबार में एक सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया थे तो गियासुद्दीन तुगलक के दरबार में, लेकिन उस समय के सुल्तान किसी औलिया पे विश्वास नहीं रखते थे। उन पे उन्हें लगता था कि ये कभी भी हमसे बगावत कर सकते हैं। तो जब तुगलकाबाद का किला बन रहा था, उस समय औलिया भी अपनी मस्जिद निज़ामुद्दीन में बना रहे थे। निज़ामुद्दीन उस ज़माने में दिल्ली के बाहर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। तो निज़ामुद्दीन में जब वो मस्जिद बना रहे थे, उसे रोकने के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने सारे लेबर्स को तुगलकाबाद किले के निर्माण में लगाया, और उसके बाद वहाँ पे पहुँचने वाला जो तेल है, क्योंकि कुछ लेबर दिन में यहाँ काम करते थे तुगलकाबाद में, रात में वहाँ मस्जिद निर्माण में लग जाते थे, तो गियासुद्दीन तुगलक ने तेल तक जाना वहाँ

बंद कर दिया ताकि वो अंधेरे में काम ना कर पाए। तो उस समय बताया जाता है कि श्राप दिया निजामुद्दीन औलिया ने कि तुम्हारा जो बसाया हुआ तुगलकाबाद है वो टिक नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ, 15 साल के बाद तुगलकाबाद वीरान है और आज भी तुगलकाबाद किला जो कि दिल्ली से मथुरा की रोड पे है वो आज भी वीरान पड़ा हुआ है। गियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल की तरफ बढ़े थे वहाँ कब्ज़ा करने और वहाँ से टैक्स वसूलने के लिए, तो उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक वो औलिया की शरण में आया, जिसकी वजह से उन्होंने धमकी दी, दिल्ली की तरफ आते समय धमकी पहुँचाई औलिया को कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ मेरे दिल्ली आने से पहले। तो औलिया ने पलट के ये जवाब दिया, हानूस दिल्ली दुरस्त कि अभी दिल्ली दूर है। और गियासुद्दीन तुगलक के दिल्ली पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे लोग एक करिश्मा ही मानते हैं। अब चलते हैं हम गियासुद्दीन तुगलक की हत्या उनके ही बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई। अब मोहम्मद बिन तुगलक एक सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए इसमें इनकी पहचान थोड़ी अलग ही है, क्योंकि ये जाने जाते थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो चलिए मैं इनके पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे बात करता हूँ। इनका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, इन्होंने सिक्का बनाने का मिंटिंग, कॉइन मिंटिंग का प्रोसेस शुरू किया। इन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी किया कि आप किसी भी धातु से कॉइन बना सकते हैं, कॉइन मिंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो चांदी के सिक्के के बराबर होगी। इसकी वजह से जो किसान थे, जो हिंदू थे, जिनको जजिया देना पड़ता था और टैक्स देना पड़ता था, वो अपने घर में धातु लेते थे और उसकी उसको बना के और वो एज अ जजिया भर देते थे। तो काउंटर फिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, नकली सिक्के का बहुत दिक्कत होने लगा, जिसकी वजह से जो शासन था उस समय की सल्तनत थी उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआबे में बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया, यहाँ तक कि कहा जाता है कि गंगा और यमुना के दुआबे में 50% तक टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो इस लेवल की प्रताड़ना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट किया, दौलताबाद जो कि आज महाराष्ट्र में आता है वहाँ पे शिफ्ट किया, और मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी लेके वो दौलताबाद पहुँचे ताकि भारत के दक्षिण हिस्से में भी मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जाए। यहाँ आने के बाद उन्होंने ढेर सारे मंदिर तोड़े और अपना सत्ता स्थापना की कोशिश की, लेकिन आक्रांता ज़्यादातर उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से आते थे, जिसकी वजह से वो दौलताबाद में रुक नहीं पाए और उनको वापस दिल्ली जाना पड़ा। और एक और इनका एक्सपेरिमेंट जो कि काफ़ी हटके था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन पे हमला करने के लिए भी एक बार सेना भेजी थी। ये सेना कांगड़ा तक पहुंची और कांगड़ा के राजाओं ने उसे हरा दिया और चीन तक वो कभी पहुँच ही नहीं पाई। इसी तुगलक वंश के एक और सुल्तान रहे जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जो हमारा दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम है जो आज अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उसका पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम फिरोजपुर शहर में था जो कि इसी फिरोज शाह सुल्तान ने बनवाया था, ये दिल्ली के बाहर था। फिरोज शाह तुगलक के समय ही तैमूर लंग का हमला दिल्ली पे हुआ था और दिल्ली में भीषण लूटपाट और खून खराबा हुआ, और करीब करीब ये बताया जाता है कि दिल्ली में 1,00,000 लोगों को मार के और उनके कंकालों से एक पिरामिड बनाया गया था। तो अब चलते हैं तुगलक डायनेस्टी से, हम चलते हैं सैयद डायनेस्टी की तरफ। सैयद डायनेस्टी का कोई ऐसा खास जिक्र मिलता नहीं है, इसके जो फाउंडर थे वो किज़र खान थे और इनका जो और दूसरा एक फेमस सुल्तान है वो मुबारक शाह। इन्होंने भी जौनपुर में, बनारस में काफ़ी मंदिर तोड़े और हिंदुओं पे बढ़ा के जजिया टैक्स लिया। इसके बाद हम चलते हैं लोधी डायनेस्टी पे, जो कि सल्तनत पीरियड की आखिरी डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोधी और इसके आखिरी रूलर थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी काफ़ी क्रूर सुल्तान माने जाते हैं। इब्राहिम लोधी ने काफ़ी अपने ही से सलारों को जान से मार दिया और काफ़ी इनकॉम्पिटेंट लोगों को अपने आसपास बैठाना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोधी ही वो थे जिनसे मजबूर होकर राणा सांगा, जो कि राणा संग्राम सिंह

के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं के एक भाई ने मिलके बाबर को काबुल से बुलाया ताकि वो लोधी डायनेस्टी को ख़त्म कर सके, दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए न्योता दिया। अब यहाँ से हम पहुँचते हैं बाबर पे। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पहला युद्ध होता है पानी, जिसे हम पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं। बाबर जो मुग़ल साम्राज्य को स्थापित करने वाला मुग़लों का पहला रूलर था दिल्ली में, ये फरगना का रहने वाला था। फरगना आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। फरगना में इसके भाइयों ने इसे खुद हराया। उसके बाद ये अपने 35,000 सपोर्टरों को लेके वो उज़्बेकिस्तान से, फरगना से काबुल की तरफ आया, और काबुल में आके इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाद में इब्राहिम लोधी के भाई और राणा सांगा की तरफ से जो न्योता मिला, उस न्योता को एक्सेप्ट करते हुए वो काबुल से दिल्ली की ओर आया और अपनी नई तोपें, जो कि भारत में उससे पहले तोपों का इस्तेमाल नहीं होता था, तो पहली बार तोपों का इस्तेमाल करते हुए बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी, जो कि आखिरी राजा थे लोधी डायनेस्टी के, उनको हटाया और मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया। बाबर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, उनका शासन सिर्फ 4 साल चला, 1526 से लेकर 1530 तक। 1526 में जब वो आए तो उन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली छोड़ने से मना किया तो राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह, उन्होंने अपनी सेना लेके दिल्ली पे चढ़ाई की, और उन्होंने 1527 में, इन दोनों के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा जो कि आगरा के पास है, फतेहपुर सीकरी से 20 किलोमीटर दक्षिणी दिशा में पड़ता है, वहाँ खानवा का युद्ध हुआ। लेकिन राणा के पास बाबर की तोपों का कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से उनकी सेना को रिट्रीट करना पड़ा। राणा सांगा घायल हालत में ग्वालियर के किले में पहुँचे, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बाबर ने चंदेरी पे चढ़ाई की और चंदेरी के राजा को हराया। बाद में इन्होंने घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा किया 1529 में। उसके बाद 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। 1530 के बाद हुमायूं, जो बाबर के बेटे थे, बड़े बेटे थे, उनके हाथ में सत्ता आई। हुमायूं एक कमज़ोर और बीमार रहने वाले सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं। 1530 में उनके पास सत्ता आई। उनके सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद शेर शाह सूरी, जो बिहार के सासाराम के रहने वाले थे, वहाँ से, वो अफ़गानी थे, मूल रूप से अफ़गानी थे, और हुमायूं मूल रूप से जो मुग़ल थे, ये माँ की तरफ से मंगोल थे और पिता की तरफ से ये तैमूर के वंशज थे, यानी तुर्क थे। तो इनको हराने के लिए अफ़गानी जनरल शेर शाह सूरी बिहार के सासाराम से अपनी सेना लेके चले और हुमायूं को युद्ध में हराया। हारने के बाद हुमायूं ईरान भागे, जो समय फारस या पर्शिया नाम से जाना जाता था। वहाँ के राजा के यहाँ इन्होंने शरण ली, और इसी समय एक इतिहास में आता है कि इनकी पत्नी जो थी प्रेग्नेंट थी, और इन्होंने अपनी पत्नी को अमरकोट, पाकिस्तान में एक जगह है अमरकोट सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, वहाँ अपनी पत्नी को छोड़ा था, जहाँ पे अकबर का जन्म होता है। आज अमरकोट का नाम बदल के उमरकोट कर दिया गया है। वहाँ पे हुमायूं की पत्नी अकबर को जन्म देती है। ये उसी समय है जब हुमायूं दिल्ली छोड़ के भागे हुए थे। बाद में ईरान के शाह ने हुमायूं की मदद की और बाद में उन्होंने शेर शाह सूरी को हराया। शेर शाह सूरी को हराने के बाद काफ़ी कम उम्र में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु सन 1556 में हुई, जब वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करके वापस आ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, तो सीढ़ियों से गिर के उनकी मृत्यु हो गई, उनकी गर्दन टूट गई थी। अब आते हैं हम अकबर पे। अकबर जो कि मुग़ल सल्तनत में जितने भी आज तक राजा हुए, जितने भी सुल्तान हुए, उनमें इकलौता ऐसा सुल्तान था जो कि अनपढ़ था। अकबर अनपढ़ था, लेकिन उसके नाम में महान लगता है। अकबर 1556 में सत्ता में आया, मात्र 14 साल की उम्र में। 14 साल का बच्चा था। अब सत्ता हस्तांतरण के तुरंत बाद ही उसने अपने दरबार में खून खराबा देखा। अकबर के एक सेनापति हुआ करते थे बैरम खान। बैरम खान ने अकबर का साथ दिया, अपनी लॉयल्टी स्थापित करते हुए अकबर का साथ दिया, और अकबर को राजा बनाने में, सुल्तान बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अकबर जब दिल्ली में कायम हुए, उसके बाद शेर शाह सूरी के ही एक जनरल हुआ करते थे हेमू, बाद में उन्होंने अपना टाइटल बदल के हेमचंद्र विक्रमादित्य किया। हेमू जो कि एक हिंदू राजा थे,
हेमू जो कि एक हिंदू कमांडर थे लेकिन उनकी पूरी सेना अफगानी थी, अफगानी मुस्लिम। इन्होंने दिल्ली पे आके चढ़ाई की और अकबर को अपनी पूरी सेना सहित दिल्ली छोड़नी पड़ी। उसके बाद अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में युद्ध होता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने जब दिल्ली पे कब्जा किया, 26 अक्टूबर को इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया हेमचंद्र विक्रमादित्य का, और इन्होंने फिर अकबर से पानीपत के मैदान में लड़ाई की, जिसे हम पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अकबर की सेना जो कि काफ़ी कमज़ोर थी हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के सामने, लेकिन हेमू को युद्ध के समय एक तीर आँख में जाके लगा, जिसकी वजह से हेमू के गिरते ही हेमू की सेना हार गई, हेमू के मरते ही। उसके बाद अकबर ने खूब शासन चलाया आयरन फिस्ट के साथ, और अकबर को ऐसा नहीं रहा कि अकबर का शासन हमेशा बहुत स्मूथ ही चला। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराने के बाद अकबर चारों दिशाओं में मुगलिया परचम लहराने के लिए अपनी सेना भेजने लगा। अकबर को सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिला मेवाड़ के राजा से, पहले उदय सिंह और फिर उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप से। इस युद्ध में एक हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ, ये काफ़ी फेमस है। 9000 की राजपूत और भीलों की सेना ने 90000 की मुगल सेना से लोहा लिया। मुगल सेना के कमांडर उस समय हुआ करते थे मान सिंह, जो कि राणा से लड़ने आए थे। तो इस पे मैं एक कविता छोटी सी बोलना चाहता हूँ महाराणा प्रताप की शूर वीरता पे, कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, के चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये भीषण युद्ध हुआ, राणा की सेना हारी जरूर लेकिन मुगलों का गुरूर भी टूटा। उसके बाद अकबर का डोमिनेंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बढ़ता रहा, लेकिन जो मुगल पावर जो डायरेक्ट ये एग्जर्ट करते थे जिस टेरिटरी में, वो बहुत बड़ा नहीं था, और लगातार हिंदुस्तान के हर इलाके से इनको रेजिस्टेंस मिलता रहा, चाहे वो बाबर हो, अकबर हो, जहांगीर हो या और आने वाले जो सुल्तान हैं। कभी पूरी तरीके से ये लोग मजबूती से सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। इनके सत्ता का जो क्षेत्र होता था दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिम की दिशा में होता था, लेकिन दक्षिण में ये लोग बहुत ज़्यादा जम के नहीं आ पाए। अब अकबर के बाद हम दूसरे सुल्तान की तरफ चलते हैं जिनका नाम है जहांगीर। अब जहांगीर जो थे सलीम नाम से जाने जाते हैं, आपने इनके ऊपर मूवी भी बनी है। तो जहांगीर ने शासन किया 1605 से लेके 1627 में। जहांगीर जो कि सलीम नाम से जाने जाते हैं, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है मुगले आज़म। जहांगीर का शासन चला 1605 से लेके 1627 तक। जहांगीर ही वो सुल्तान है जिन्होंने पहली बार अंग्रेज़ों को परमिट दिया भारत में ट्रेड करने का। जहांगीर जो कि अपने ड्रिंकिंग की वजह से काफ़ी बदनाम थे, और कहा जाता है कि सत्ता मिलने के बाद इन्होंने खैर अपने पिता से बगावत की थी, हार भी गए थे, लेकिन अकबर ने इन्हें कोई सज़ा नहीं दी क्योंकि ये बहुत दुआओं के बाद एक बेटा इन्हें मिला था। जहांगीर जो थे वो अकबर और जोधा के बेटे थे, तो आधा ये राजपूत थे। तो जहांगीर शराब पीने के लिए काफ़ी बदनाम थे, और इनके समय पे मुगलों का कोई खास ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ। फिर हम आते हैं जहांगीर के बाद शाहजहां पे। शाहजहां का शासन 1628 से लेके 1658 तक चला। शाहजहां जो थे वो कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी फेमस हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने आगरे का लाल किला बनाया, और शाहजहां ने दिल्ली का भी लाल किला बनवाया, जो कि अपने आप में एक मार्वल है। ताजमहल जो कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है, इसमें खून पसीना यहीं के लोगों का है, पैसा भी यहीं के लोगों का है, लेकिन क्रेडिट ये ले जाते हैं। अब शाहजहां के बाद 1658 में शाहजहां को तख्त से हटाने के बाद औरंगज़ेब आया। औरंगज़ेब अपने ही सगे भाई दारा सिकोह की हत्या करके और अपने ही पिता शाहजहां को जेल में बंद करके राजा बना, सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद 1658 से लेके 1707 तक इसने शासन किया। औरंगज़ेब एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है।
और औरंगजेब को हमेशा जब से वो शासन में आया तब से उसे विद्रोह झेलने को मिला। दक्षिण में मराठा, पूरब में आहोम, उत्तर में सिख, ये हमेशा से औरंगजेब से लड़ते रहे और औरंगजेब का पूरा शासन युद्ध करने में ही बीत गया। इस पीरियड में शिवाजी महाराज का उदय होता है जब उन्होंने औरंगजेब से लोहा लिया और पूरी मुगल सेना को दक्षिण में दबा के रखा ताकि उत्तर में सिख और पूरब में आहोम अपने अपने राज को और मजबूत कर सकें। इसके बाद जो मुगल सल्तनत चली, इन्हें हम लेटर मुगल्स के नाम से जानते हैं, जिनके समय कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ। उसके बाद से औरंगजेब के मृत्यु 1707 में हुई, उसके बाद से मुगल सल्तनत का पतन ही शुरू हुआ। इसके बाद एक नादिर शाह का हमला होता है मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह लेटर मुगल के एक सुल्तान के रूप में है जो लगभग 30 साल उनका शासन चला। वो ये पतन मुगल सल्तनत का पतन का ही समय था। तो नादिर शाह जब यहाँ आए तो वो जो विश्व प्रसिद्ध पीकॉक थॉर्न और कोहिनूर हीरा भारत से नादिर शाह ही लेके मोहम्मद शाह के समय चले गए थे। अब ये तो रही मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ाई और उसके बारे में जानकारी। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ब्रिटिश रूल की तरफ। ब्रिटिश रूल हमारे देश पे डायरेक्ट तो काफ़ी लेट से आया, लेकिन उन्होंने कान तो पकड़ा लेकिन घुमा के। ब्रिटिशर्स द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ 31 दिसंबर 1600 में। ये एक रॉयल चार्टर जो कि उस समय की रॉयल क्राउन ने पास किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसको 215 मर्चेंट्स हेड करते थे। ये लोग कॉटन में, सिल्क में, इंडिगो में और स्पाइसेस में ट्रेड करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिना परमिट के तो भारत में ट्रेड कर नहीं सकती थी, तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा 1609 में। विलियम हॉकिंस जो कि खुद बहुत शराब के नशे में धुत रहते थे, तो वो जहांगीर के साथ मिलके काफ़ी शराब पीने लगे। तो वो जिस मकसद के लिए आए थे वो अपना मकसद भूल गए और उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का परमिट जहांगीर से नहीं ले पाए। तो ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आद फरमान जारी किया और विलियम हॉकिंस को वहाँ से हटा के सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। सर थॉमस रो 1612 से लेकर 1619 तक जहांगीर के दरबार में रहे और 1612 में उन्होंने एक परमिशन सिक्योर किया ताकि वो सूरत में एक फैक्ट्री या कि कहें ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करने के लिए एक परमिशन जहांगीर से लिया। और बाद में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पूरे सूरत पोर्ट पे ही कब्जा ले लिया। अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ोतरी कैसे हुई, भारत में कैसे उन्होंने अपना फन फैलाया और किस तरीके से अपने टेंटेकल्स बढ़ाते हुए भारत पे कब्जा किया। अंग्रेज़ों ने सूरत 1612 में लिया परमिट के थ्रू। उसके बाद बॉम्बे जो आज का मुंबई है वो उस जमाने में पुर्तगालियों के कब्ज़े में हुआ करता था। उसी दौर में पुर्तगाल की एक राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के राजा से हुई, तो जिसके एवज में स्पेन ने एज अ दहेज 1668 में बॉम्बे को, जो अब मुंबई नाम से जाना जाता है, उसे इंग्लैंड को दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में मुंबई आ गया 1668 में। उसके बाद कोलकाता को इन्होंने पोर्ट बनाने की तो कोशिश की थी, लेकिन कोलकाता का इम्पोर्टेंस जो बढ़ा वो 1690 में बढ़ा। बाद में पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन फोकस और मेन हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम्स कोलकाता चला गया। कोलकाता के बारे में, बंगाल के बारे में ये कहते हैं, बंगाल सूबे के बारे में ये कहा जाता है कि पूरी इंग्लैंड की इकोनॉमी जितनी थी उससे ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ बंगाल सूबा जनरेट करता था। फिर हम आते हैं 1717 में, जब फारूक शियार जो एक मुग़ल, लेटर मुग़ल के एक बादशाह हुआ करते थे, मुग़ल बादशाह थे, तो फारूक शियार जो थे उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे थी हमसे, तो इनके पास अच्छे सर्जन्स थे। इनको बताते हैं कि पीठ में एक फोड़ा टाइप का हुआ था जो कि यहाँ के वैद्य ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक डॉक्टर भेजा
और फारूक सियार को ठीक किया। फारूक सियार ने ठीक होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी ट्रेड में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, और वो भी टैक्स फ्री मोनोपोली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री तरीके से कोई भी बिजनेस कर सकती थी। ये 1717 में फरमान जारी किया फारूक सियार ने। अब ये जो फ्री का जो मोनोपोली का ट्रेड था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने माल प्रैक्टिस शुरू किया। जैसे ये भारत के जो ट्रेडर्स होते थे या फ्रेंच ट्रेडर्स थे, डच ट्रेडर्स थे, इनसे ये लोग सस्ते में सामान खरीद लेते थे और फिर उसको भारत के बाज़ार में टैक्स फ्री के रूप में उतार देते थे। तो जिससे जो बंगाल सूबा था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। बंगाल सूबा उस ज़माने में नॉमिनल सुजरेनिटी में काम करता था अंडर मुगल्स। नाम का मुगल परचम रहता था लेकिन लगभग ऑटोनॉमी थी। तो हम देखते हैं कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल की सत्ता जाती है सिराजुद्दौला के हाथ में। सिराजुद्दौला एक कम उम्र में नवाब बने। इनकी मौसी का नाम था घसीटा बेगम और घसीटा बेगम के बेटे हुआ करते थे मीर जाफर अली खान। तो ये माँ बेटे ने मिलके सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रची। अब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के माल प्रैक्टिसेस से दुखी होकर सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला करने का प्लान बनाया। ये प्लान घसीटा बेगम और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव से जाके बताया और इनके बीच में गठबंधन हुआ कि प्लासी के युद्ध में धोखा देते हुए मीर जाफर और घसीटा बेगम जाके अंग्रेज़ों से मिल गई। 1757 प्लासी का युद्ध में जो अंग्रेज़ों की सेना थी वो करीब करीब 3,000 की थी। सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो 50,000 की सेना थी। फिर भी युद्ध जो हारा वो सिराजुद्दौला ने हारा, क्योंकि मीर जाफर ने अपने सैनिकों को लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और ये पहला युद्ध था जो ब्रिटेन, जो एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके भारत में जीता। उसके बाद मीर जाफर को नवाब बिहार बना दिया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। नवाब बनाने के बाद मीर जाफर से अंग्रेज़ों ने करोड़ों रुपया वसूला। रॉबर्ट क्लाइव खुद पर्सनली जाते थे और उससे टैक्स वसूलते थे, पैसा वसूलते थे, गिफ्ट वसूलते थे। तो ब्राइबरी, जो कि घूसखोरी हमें कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मीर जाफर के समय। अब मीर जाफर ने असहमति दिखाई अपनी कि मैं इतना ज़्यादा गिफ्ट और इतना ज़्यादा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे सकता। तो इससे गुस्सा होके ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब बंगाल का नवाब बनने के बाद जब मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेज़ों का अत्याचार उनके लोगों पे बढ़ता जा रहा है, मीर कासिम की पावर लगभग लगभग ख़त्म कर दी गई थी, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके पटना के पास एक जगह पड़ती है मुंगेर, मुंगेर में शिफ्ट की। और मुंगेर में वहाँ पे उसने अपना फैक्ट्रीज लगाई, हथियार बनाने का प्रबंध किया। और मीर कासिम ने शाह आलम, जो कि उस समय मुग़ल सुल्तान हुआ करते थे, मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, और वो खुद दिल्ली से भगाए गए थे, तो वो अपने समर्थकों के साथ इधर उधर घूमते थे और उनको पनाह दे रखी थी अवध के नवाब ने, सुजाउद्दौला ने उस समय। तो मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय, जिनको हम शाह आलम साहनी के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ मिलके और सुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब के नाम से जाने जाते हैं, इनके साथ मिलके एक सेना खड़ी की जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से बहुत बड़ी थी। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जीतती है इन तीनों, मुग़ल एम्पायर, बंगाल का सूबा और अवध का सूबा, इन तीनों की मिली हुई सेना को हराती है। इसके एवज में शाह आलम को बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का टैक्स कलेक्ट करने का राइट डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब डायरेक्ट टैक्स वसूल रही थी और डायरेक्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन इन क्षेत्रों में चला रही थी। बैटल ऑफ प्लासी में डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिला था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डायरेक्ट शासन, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का मौका मिला। और अब ऐसा नहीं है कि
बक्सर के बाद ये लोग आगे बढ़े, बक्सर के बाद अंग्रेज़ों का मैसूर से वॉर हुआ 1767 से लेके 1799 तक, जब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई सरिंगपट्टनम के किले में और पूरा मैसूर इन्होंने कब्जा लिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई मराठाओं से 1775 से लेके 1818 तक, जब 1818 के बाद आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा के उनको कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था, या कहें एग्जाइल कर दिया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने चारों ओर अपना शासन बढ़ाया। फिर हम चलते हैं पहले गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स के वॉरेन हेस्टिंग्स की तरफ। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे और अपने लालचपन के लिए भी जाने जाते थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जितना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत पर बढ़ाया शायद ही किसी गवर्नर जनरल ने बढ़ाया हो। वॉरेन हेस्टिंग्स की बारे में कहा जाता है कि जब वो बनारस के राजा महाराजा चेत सिंह के पास गए तो उन्होंने बोला, महाराजा चेत सिंह घोड़े के बहुत शौकीन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनारस पे कब्ज़ा ना करे तो मुझे हर महीने 2 घोड़े आप भेजते रहिए। तो महाराजा चेत सिंह ने मना किया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बनारस के पास आई, कैंप किया और धोखे से महाराजा चेत सिंह को मारने की कोशिश की। महाराजा चेत सिंह ने वॉरेन हेस्टिंग्स पे हमला किया लेकिन वो बच के भाग निकला। तो इसी के लिए एक कहावत है जो बनारस में काफ़ी प्रसिद्ध है और बोली जाती है, घोड़े पे हौदा हाथी पे जिंद, काशी से भागा वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद इनके कई गवर्नर जनरल आए लेकिन एक प्रसिद्ध आए लॉर्ड डेलहाउजी। डेलहाउजी ने नई पॉलिसी लाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरह जो भी हिंदुस्तानी राजा जिसका अपना बच्चा नहीं है वो बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकता और उसके साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चिंगारी थी 1857 की क्रांति के लिए। ऐसा नहीं है कि जब अंग्रेज़ अपने टेंटेकल्स अपना राज फैला रहे थे तो उन्हें टक्कर नहीं मिली या उनके खिलाफ लड़ने वाले लोग नहीं खड़े हुए। मैं आपको कुछ रिबेलियंस, कुछ रिवोल्ट से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। 1770 से 1777 तक चलने वाला जो पहली लड़ाई लड़ी गई अंग्रेज़ों के खिलाफ वो बैटल ऑफ बक्सर के होने के 6 साल बाद, उसे कहा जाता है सन्यासी रिबेलियन। इस समय हमारे देश के साधु जो कि बंगाल उड़ीसा इधर जगन्नाथपुरी मंदिर की तरफ जाते थे, इन्होंने अंग्रेज़ों की क्रूरता देख के और अंग्रेज़ों द्वारा डेवलप किया गया आर्टिफिशियल फेमिन को देखते हुए इन्होंने रिबेलियन चालू किया और अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को 7 साल लगा सन्यासी रिबेलियन ख़त्म करने में, हालांकि वो पूरी तरह उसे दबा नहीं पाए। उसके बाद हम चलते हैं बिहार रिवोल्ट पे। 1781 में बिहार रिवोल्ट चालू हुआ तो बिहार के जो ज़मींदार और राजा हुआ करते थे, जिसमें बेतिया राज, हथुआ राज, इन राजघरानों ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की और इनसे लड़ाई लड़ी। उसके बाद हम आते हैं वेल्लोर म्यूटिनी पे। वेल्लोर जो कि तमिलनाडु का एक शहर है, वेल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मिलिट्री गैरिसन हुआ करता था। उस गैरिसन के सैनिकों ने अपने ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ ही म्यूटिनी की, उनका विरोध किया, उनसे युद्ध किया। इसके बाद एक फेमस लड़ाई होती है जिसका नाम है पाइका रिबेलियन, जो 1817 में हुआ। पाइका रिबेलियन 1817 से 1824 तक चला। पाइका रिबेलियन में पाइका जो कि एक वॉरिंग कम्युनिटी थी, एक मार्शल कम्युनिटी हुआ करती थी उड़ीसा की, जब अंग्रेज़ों ने उड़ीसा पे कब्ज़ा किया तो पाइका जो थे बेरोज़गार हो गए, उनके पास उनकी ज़मीनें छीन ली अंग्रेज़ों ने, उन और कुछ जो पुराने ज़मींदार थे उनकी ज़मींदारी की नीलामी कर दी। तो पाइका जो थे दे वर वेरी डिसग्रंटल्ड विद ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पाइका रिबेलियन हुआ, भगवान जगन्नाथ को मानते हुए, जय जगन्नाथ कहते हुए उन्होंने मुहिम छेड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो पाइका रिबेलियन 1817 से 1824 तक चला और इन्हें 7 साल लगा अंग्रेज़ों को पाइका रिबेलियन दबाने में। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है,
जिसकी एक नायिका रही झांसी की रानी।

सैनिक थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक हो जो कि म्यूटिनी कर गए थे, या जो राजघराने थे उनके सैनिक हो, और 100,000 जनरल पब्लिक की मौत हुई। हालांकि कुछ एस्टीमेट 1,000,000 तक बताते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल आंकड़ा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो ये जो सिपोही रिवोल्ट हुआ या भारत का पहला इंडिपेंडेंस का लड़ाई हुआ 1857 में, ये इतना दूरदर्शी था और भारत के चारों ओर फैला हुआ था। उत्तर भारत में इसका प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन फिर भी भारत के हर कोने में इसका प्रभाव देखा गया। लेकिन इसको इतना बुरी तरह दबाया अंग्रेज़ों ने, इतना बुरी तरह दबाया कि भारतीयों की जहन में जो डर और खौफ ईस्ट इंडिया कंपनी का बैठा, अंग्रेज़ों का बैठा, उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी समय लगा। उत्तर प्रदेश में आज भी मेरठ में और बागपत में ऐसे भी गांव हैं जहां पूरे पूरे गांव को अंग्रेज़ों ने एक ही पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे, पाकड़ के पेड़ पे फांसी लगा दी। औरत, बच्चा, बुढ़ा किसी को नहीं छोड़ा, पूरा पूरा गांव समाप्त कर दिया। तो ऐसा भी कई जगहों पे इन्होंने किया, जिसकी वजह से गाँव के गाँव उजड़ गए और लाखों लाख लोगों की हत्या हुई। अब ये तो रहा कुछ रिवोल्ट जो कि होता रहा। अब हम एंटर करते हैं उस फेज़ में जिसे हम गांधीयन फेज़ ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं या गांधीयन फेज़ ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहते हैं। तो गांधी जी, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया अंग्रेज़ों के खिलाफ साउथ अफ्रीका में, वो भारत में आते हैं 1914 में। उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को एडवाइस किया कि अगर आपको असली हिंदुस्तान जानना है, यहाँ आके आपको एक मूवमेंट खड़ा करना है, अंग्रेज़ों से लड़ना है, तो पहले आप भारत को घूमिए। तो गांधी जी ने पहले पूरे भारत का भ्रमण शुरू किया। गांधी जी चूँकि बहुत चर्चा में थे उस समय, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों को जगा के अपनी बात मना ली थी, और लोगों को पहली बार एहसास हुआ था कि हम बिना हथियारों के भी लड़ सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, तो गांधी जी काफ़ी चर्चा में रहते थे उस समय। उसी समय एक संत राउत और शुक्ला जी, ये दो चंपारण के रहने वाले किसान थे, जो कि अंग्रेज़ों की क्रूर जो पॉलिसीज़ हुआ करती थी उसके ख़िलाफ़ ये आए और बापू से उनकी मदद मांगी। अंग्रेज़ क्या करते थे, चंपारण में जो बिहार का एक हिस्सा है चंपारण, अब वो पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण हो चुका है, अब बांट दिया गया है वो ज़िला, लेकिन ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। तो चंपारण ज़िले में ये लोग इंडिगो प्लांटेशन के लिए किसानों को फोर्स करते थे, और जो इंडिगो प्लांटेशन है ये बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है और ये ज़मीन को भी बैरन कर देता है। अब इंडिगो प्लांटेशन करने के, जब तक किसान करते थे तब तक पहले ठीक था कि खेती हो जाती थी, ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए, जो ज़मीन को बंजर कर देती थी और पानी भी बहुत ज़्यादा मांग करती थी। अब ये किसान उस क्षेत्र के चंपारण के किसानों को, जो वहाँ का सदियों से चलता आया जो गेहूं है, धान है, गन्ना है, इन फसल को वो उगाने नहीं देते थे। बाद में इंटरनेशनल मार्केट में डाइज आ गई, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आ गए, तो इंडिगो की डिमांड ख़त्म हो गई, ना के बराबर हो गई। तो अब जो ये किसान थे ये इंडिगो के अलावा और उसमें कुछ उगा नहीं सकते थे, क्योंकि ज़मीन इंडिगो के अलावा किसी और क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी, या उसका उत्पादन बहुत कम हो गया था बाकी प्रोडक्ट्स का। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो टैक्स पॉलिसी लगाई थी वो टैक्सेस वो बढ़ाते ही जा रहे थे, और क्रूरतापूर्वक वो टैक्स वसूलते थे, उनके घर का सामान उठा के ले जाना और मारपीट करना किसानों के साथ, तो ये सब शुरू हो गया था। तो इसको देखते हुए संत राउत जी पहुँचे गांधी जी के पास और उन्हें जाके बोला कि आप आओ और चंपारण में सत्याग्रह करो। तो हिंदुस्तान में गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ, और वहीं पे गांधी जी को पहली बार बापू नाम से बुलाया गया। गांधी जी वहाँ पे गिरफ्तार भी हुए और उन्होंने वहाँ अंग्रेज़ों की सज़ा मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन इतनी भारी भीड़ देख के गांधी जी, जो कि बापू नाम से वहाँ जाने गए या बापू का टाइटल मिला चंपारण सत्याग्रह के बाद, उसके बाद से वो अपनी बात मनवा ली अंग्रेज़ों से और टैक्सेस काफ़ी कम करवा दिए। इसके बाद हम आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था 1919, बैसाखी के दिन 2000 निर्दोष लोगों को, जो कि निहत्ते निर्दोष लोगों को अंग्रेजी

0: सेना ने मारा था, जनरल डायर के आदेश पे जो मारा गया जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था, उसके रिस्पांस में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू किया। ये जो मूवमेंट चला इसमें गांधी जी ने कॉल दी कि स्टूडेंट्स ब्रिटिश कॉलेजेस का बहिष्कार करें, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब छोड़ दें, और लोगों ने किया। बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट कॉलेजों से बाहर आ गए, स्कूल से बाहर आ गए, अंग्रेज़ों के कपड़े पहनने से मना कर दिया, अंग्रेज़ों का सामान इस्तेमाल करने से मना कर दिया, लेकिन हिंसा नहीं की, वायलेंस से दूर रहे। बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी। लेकिन 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है। चौरी चौरा नाम का एक शहर जो कि गोरखपुर के पास है, वहाँ से एक प्रोसेशन निकल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा लगाते हुए। उसी समय उनके ऊपर पुलिस वालों ने फायरिंग की, जिसके रिस्पांस में वो जो सत्याग्रही थे उन्होंने चौरी चौरा थाने को आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इसको देखते हुए गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद 1922 के बाद से हालांकि कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चलते रहे, जिनका जिक्र मैं बाद में करूँगा, थोड़ी देर बाद करूँगा, अभी मैं थोड़ा गांधी जी को ख़त्म करता हूँ। तो इसके बाद से 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया सॉल्ट टैक्सेस को हटाने के लिए, कि नमक जैसी बेसिक चीज़ जो गरीब के प्लेट में होनी ही होनी चाहिए, उस पर तक अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा रखा था और उसको बेचने पे मोनोपोली बना रखी थी। अंग्रेज़ों का ये कानून था कि अंग्रेज़ों के अलावा कोई भी नमक प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, और उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया 12 मार्च 1930 को, और 5 अप्रैल को वो डांडी शहर पहुँचे अपने साबरमती आश्रम से। वहाँ जाके उन्होंने पानी को गर्म करके नमक बनाया और नमक को कंज्यूम किया, और गांधी जी के हजारों हजार फॉलोअरों ने इसी चीज़ को फिर से किया, हर जगह किया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज़ हुआ। इसमें अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कपड़े, उनके द्वारा बनाए गए सामान गुड्स, उनको बॉयकॉट किया गया और उनकी होली जलाई गई। इसके बाद 1930 के बाद हम सीधा आते हैं गांधी जी द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ 9 अगस्त 1942 को हुआ, जब वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। तो 9 अगस्त 1942 से लेके 1945 तक, जब तक अपनी बात नहीं मनवाई तब तक क्विट इंडिया मूवमेंट चलता रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट इतना फेरोशियस मूवमेंट था जो कि गांधीयन मूवमेंट में ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि इतनी फेरोसिटी के साथ किसी मूवमेंट को चलाया गया हो। उस समय गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, या हम कहें करो या मरो। तो करो या मरो का स्लोगन के साथ यह आगाज़ हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी क्रूरता की, प्लेन से बॉम्ब गिराए सत्याग्रहियों के ऊपर, लेकिन क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मैन पावर रिसोर्स और हथियारों का रिसोर्स ये काफ़ी वर्ल्ड वॉर टू में लगा हुआ था, जर्मनी के अगेंस्ट लड़ने में, इटली के अगेंस्ट लड़ने में, जिनको हम फासिस्ट फोर्सेस कहते हैं, इनके अगेंस्ट लड़ने में, तो अंग्रेज़ अब समझ चुके थे कि अब इंडिया को संभालना मुश्किल है। तो उसके बाद 1945 में हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन आने के बाद हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये थी गांधीयन मूवमेंट की हिस्ट्री। और इसी समय पैरेलल गांधीयन मूवमेंट के पैरेलल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी चल रहे थे, जिनका 2 फेज हुआ, फेज 1 फेज 2। फेज 1 आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास, और फेज 2 आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास। तो इस समय हालांकि इतिहास की किताबों में ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज भी इसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं इसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के नाम से आप लोगों को संबोधन करूँगा। अब अलीपुर बॉम्बिंग केस एक हुआ था 1908 में, जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर डॉगलस किंग्सफोर्ड पे हमला किया था और उसकी हत्या की थी। ब्रिटिश ऑफिसर डॉगलस किंग्सफोर्ड पे हमला किया गया, जिसमें डॉगलस किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन 2 सिविलियंस की, ब्रिटिश सिविलियंस की उसमें मौत हुई। इसमें खुद्दीराम बोस, जो कि सिर्फ 18 साल के थे, इस केस में उनको फांसी दी गई, और प्रफुल्ल चक्की, अंग्रेज़ों के हाथ में आने से पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके बाद 1912 में जब अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी शिफ्ट की कलकत्ता से दिल्ली, तो इन्होंने दिल्ली में एक बहुत भव्य प्रोसेशन निकाला जिसमें इन्होंने भारत भर के जितने राजा थे उनको बुलाया और कंपल्सरीली बुलाया कि आपको सलाम ठोकने आना ही पड़ेगा दिल्ली में। तो दिल्ली में काफ़ी ग्रैंड एंट्री की गई, और अगर आप लोग दिल्ली गए हो तो आपने देखा होगा कि लाल किला, चांदनी चौक, ये सब एक ही सीध में है, स्ट्रेट सीधे एक ही रोड पे है। तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के, तो लॉर्ड हार्डिंग अपने हाथी पे बैठ के जब आ रहे थे तो उनको मारने की साजिश रची थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने बम चलाया चांदनी चौक चौराहे के पास, बम चलाया लॉर्ड हार्डिंग पे, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग घायल हुए लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद रास बिहारी बोस अंडरग्राउंड हो गए, 1915 में उन्होंने भारत छोड़ दिया और वो सीधा जापान गए, जहाँ पे वो वहाँ के नेचुरलाइज सिटीजन हो गए और बाद में INA, जो इंडियन नेशनल आर्मी है जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा, उसकी कमांड उनके हाथ में आ गई। अब हम चलते हैं 1915 का एक जिमरमैन प्लान है, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे बाघा जतिन, जतिन मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट फेस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। इन्होंने 1915 में जर्मनी से जाके, जर्मन उस समय जर्मनी और इंग्लैंड अपोजिट साइड्स में थे और उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, तो जाके जर्मनी से हेल्प मांगी और जर्मनी से बहुत बड़ा हथियारों का कंसाइनमेंट उड़ीसा के बालासोर में आने वाला था, लेकिन मुखबिरी के कारण बाघा जतिन की पोजीशन लोकेट हो गई और अंग्रेज़ों ने घेर के इनका एनकाउंटर किया, जिसमें जतिन मुखर्जी, हालांकि मौका था उनके पास भागने का लेकिन उन्होंने लड़ के मरना, शहीद होना पसंद किया। फिर हम आते हैं 1930 का चित्तगांव आर्मरी रेड। चित्तगांव आज अब तो बांग्लादेश में चला गया है, वहाँ पे एक मास्टर हुआ करते थे मास्टर सूर्य सेन। मास्टर सूर्य सेन ने स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग दी हथियार चलाने में, और चित्तगांव में एक बहुत बड़ा आर्मरी हुआ करता था जहाँ पे अंग्रेज़ अपने हथियार रखा करते थे, उस आर्मरी पे इन्होंने रेड की, वहाँ से सारे हथियार उठाए, अंग्रेज़ों की जो जितनी कनेक्टिंग रेलवे रेल रूट था, लैंड रूट था, ये सबको उड़ा दिया, इसको तबाह कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि लगभग एक हफ्ते के लिए चित्तगांव को आज़ाद करवा दिया था मास्टर सूर्य सेन ने। बाद में मास्टर सूर्य सेन के स्टूडेंट्स ने चित्तगांव के बाहर एक पहाड़ पर जाके पोजीशन ली, वहाँ पे गुरखा राइफल्स की पहली बटालियन 1/11 गुरखा की पलटन है, जो हालांकि 2 विक्टोरिया क्रॉस उनको मिला है, ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उनकी भी ईंट से ईंट बजा दी, और 1/11 गुरखा राइफल्स को भी बहुत टाइम लगा स्कूली बच्चों से लड़के और उनको पकड़ के और इस मूवमेंट को ख़त्म करने में। फिर हम आते हैं बहुत फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जो 9 अगस्त 1925 में हुई। काकोरी एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा कस्बा है लखनऊ शहर के बाहर, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अन्य लोगों ने मिलके अंग्रेज़ जो लूट का सामान लेके जा रहे थे हिंदुस्तान से, जो इंग्लैंड जाता उसमें अंग्रेज़ों का सामान, अंग्रेज़ों की ट्रेन रोक के उन्होंने सामान लूटा और उसका बाद में ये लोग इस्तेमाल करते थे अपना हथियार खरीदने में और दूसरा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में उसका खर्चा करते थे। फिर हम आते हैं, इसके बाद जो रेवोल्यूशनरी लीडरशिप थी उसकी कमांड चली जाती है भगत सिंह के हाथों में। फिर हम आते हैं सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस, ये दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंका था, वो बॉम्ब में शार्पनल्स नहीं डाले थे तो उससे किसी की प्राण नहीं जाते लेकिन आवाज़ काफ़ी हुई थी, धमाका काफ़ी हुआ था। तो 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका गया दिल्ली में, भगत सिंह द्वारा बॉम्ब फेंका गया, इसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया। बाद में एक पुराना सॉन्डर्स केस, सॉन्डर्स एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनकी हत्या का केस निकाल के उसमें भगत सिंह को दोषी करार करके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी की सजा दी गई। अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस जी पे थोड़ा गौर करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को प्यार से नेताजी बुलाया जाता था। नेताजी ने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज का पेपर दिया और पूरी उस समय ICS का पेपर पूरी दुनिया भर में कोई भी दे सकता था, तो उस समय ग्लोबल लेवल पे इनकी 4th पोजीशन आई थी। उन्होंने 1922 में पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद 1938 में हरिपुरा सेशन में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, वो प्रेसिडेंट का चुनाव जीते। उसके बाद 1939 में भी वो प्रेसिडेंट का चुनाव जीते, लेकिन गांधी जी ने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, नेताजी के साथ काम करने से मना कर दिया आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से, तो उसके बाद नेताजी कांग्रेस पार्टी छोड़ के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई 1939 में, जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ के कारण, सत्याग्रहों के कारण अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र बोस, या हम कहें नेताजी से मैं संबोधन करना चाहूँगा, नेताजी को जेल में डाला। जेल में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको कलकत्ता उनके घर शिफ्ट कर दिया। कलकत्ता से, जिसको हम एक ग्रेट एस्केप भी बोलते हैं, कलकत्ता में उनका घर चारों ओर पुलिस ने घेर रखा था ताकि वो भाग ना सके। फिर भी वो एक पठान का भेष बदल के और कलकत्ता से पेशावर गए, पेशावर से वो अफगानिस्तान की टेरिटरी में घुसे, अफगानिस्तान से वो रशिया गए, रशिया में वो कुछ समय रहे, रशियन अथॉरिटी को उन्होंने परसुएट करने की कोशिश की कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वो भी कुछ एफर्ट डाले, कुछ हेल्प करे। लेकिन जब सोवियत्स मिल गए ब्रिटिशर्स के साथ, जो एलाइज, हम एलाइज नाम से इनका संबोधन करते हैं, तो जब ये एलाइज हो गए तो नेताजी वहाँ से चले गए जर्मनी। जर्मनी में वो हिटलर के साथ, उनकी वहाँ मीटिंग भी हुई, और जो जर्मन आर्मी ने, जो इंडियन ओरिजिन के जो सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से भेजे थे वहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू में लड़ने के लिए, उन सैनिकों को इकट्ठा करके एक फ्री इंडिया लीजन बनाया, और वहीं से उन्होंने एक आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की जो बर्लिन में हुआ करता था। उसके बाद हिटलर जाना जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, उसका उसको अपना रेस काफ़ी सुपीरियर लगता था, तो नेताजी को लगा कि हो सकता है कि हिटलर बाद में धोखा दे दे या हिटलर इंडिया को ही गुलाम बना ले। तो 1943 में नेताजी वहाँ से जापान चले गए सबमरीन्स के थ्रू, जापान से सिंगापुर गए, और सिंगापुर में उन्होंने जाके रास बिहारी बोस से इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड ली। अब मैं आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह द्वारा बनाई गई थी। मोहन सिंह अंग्रेज़ों के कमांडर हुआ करते थे, और जब जापान से भाग के, जापान के हमले के बाद जब ब्रिटिश आर्मी रिट्रीट कर रही थी, मोहन सिंह ने रिट्रीट करने से मना कर दिया और जापानियों की हेल्प मांगी ताकि वो एक सेना खड़ा कर सके और अंग्रेज़ों से लड़ पाए। तो 1942 में 16,000 सैनिक इन्होंने इकट्ठा किए और इंडियन नेशनल आर्मी की फर्स्ट डिवीज़न खड़ा किया। उसके बाद मोहन सिंह की जापानियों से नहीं बनी, जापानियों ने मोहन सिंह को डिटेन किया। मोहन सिंह के बाद उन्होंने रास बिहारी बोस को उसका हेड बनाया, कमांड दी, और रास बिहारी बोस ने 1943 में वो कमांड सुभाष चंद्र बोस को दी। नेताजी जब 1943 में कमांड लेके सिंगापुर आए, सिंगापुर मलेशियन पेनिनसुला का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो नेताजी इतने पॉपुलर थे और उनकी स्पीच सुनने के बाद वहाँ माताएं बहनें अपने सारे गहने उतार के दे देती थीं, वो इतनी प्रभावशाली उनकी स्पीच हुआ करती थी। और पुराने जो POW, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, वो तो जुड़े ही नेताजी के साथ। उसके साथ जो इंडियन डायस्पोरा जो मले पेनिनसुला में रहता था, काफ़ी माइग्रेशन था यहाँ से इंडिया की तरफ से, तो वो लोग भी काफ़ी भारी मात्रा में आके नेताजी से जुड़े। वहाँ नेताजी ने एक बहुत फेमस लाइन कही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद जापानियों ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंडियन नेशनल आर्मी को ट्रांसफ़र किया 1943 में, जिसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस ने रखा शहीद और स्वराज द्वीप। 1944 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया रंगून में। रंगून के बाद 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर सिंगापुर से शिफ्ट करके रंगून में किया गया। रंगून जो कि म्यांमार का हिस्सा है, म्यांमार की उस समय राजधानी हुआ करती थी, जो अब म्यांमार कहा जाता है, उस ज़माने में बर्मा कहा जाता था। वहाँ पे नेताजी ने स्लोगन दिया चलो दिल्ली। ये स्लोगन देने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी की सेना जापानी सेना के साथ मिलके भारत के उत्तर पूर्व के हिस्से में, जो हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कोहिमा तक पहुंच गई। कोहिमा नागालैंड का हिस्सा है और इम्फाल में भी इंडियन नेशनल आर्मी पहुंची, जो कि मणिपुर की राजधानी है। तो इस इलाके तक कब्जा कर लिया था इंडियन नेशनल आर्मी ने। बाद में ब्रिटिशर्स का काउंटर अटैक हुआ और उस काउंटर अटैक में इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करना जापानियों ने बंद कर दिया। जापानियों ने राशन रोक दिए, जापानियों ने हथियार रोक दिए, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी और उनके पास कमी थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी की सप्लाईज बंद हो गई थी और उस साल इतना भीषण मानसून हुआ, इतनी बाढ़ आई कि जो बची कुछ सप्लाईज थी वो मानसून में बह गई। और फिर जब इधर से एलाइज का या ब्रिटिशर्स का जब काउंटर अटैक शुरू हुआ तो हम उसको झेल नहीं पाए। इंडियन नेशनल आर्मी के पास कोई एयरफोर्स नहीं थी, ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छी एयरफोर्स थी जो कि कोलकाता की एयरबेस से आके और यहाँ पे काफ़ी हमला करते थे आईएनए के ऊपर। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापानियों ने सरेंडर किया और हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, उसके बाद 15 अगस्त 1945 को एक फॉर्मल सरेंडर जापानियों द्वारा किया गया और उसके साथ ही आईएनए ने भी सरेंडर कर दिया। इसके बाद 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक एयर क्रैश में ताइपी के ऊपर मारे जाते हैं, ऐसी आवाज़ हुई। हालांकि इसको भी अभी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, लेकिन अब ये तो बात की बातें हैं। इसके बाद हमारा 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी होता है मुंबई में, और ये 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी होता है और इसको इतना भारी समर्थन मुंबई के आम जनमानस के द्वारा मिलता है कि अब अंग्रेज समझ चुके हैं कि अब हम अपने फोर्सेस पे, जो इंडियन फोर्सेस हैं उन पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, तो इन्हें अपनी कमज़ोरी, ब्रिटिशर्स को अपनी कमज़ोरी दिखने लगी। इसके बाद आईएनए के जो लीडर्स थे इनका ट्रायल शुरू हुआ, आईएनए ट्रायल नाम के, जो लाल किले में आईएनए का ट्रायल हुआ उसके लिए, उसके अगेंस्ट में पूरे देश में इतना मैसिव प्रोटेस्ट हुआ कि हालांकि कोर्ट मार्शल में दोषी पाए जाने के बावजूद तीनों लीडर्स को छोड़ना पड़ा ब्रिटिशर्स को। फिर उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी शुरू हुई 1945 का, जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ उसके बाद अब ब्रिटिशर्स सुपर पावर नहीं रह गए थे। उस समय बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हुआ, दो ही सुपर पावर थे, एक यूएसए, एक यूएसएसआर सोवियत संघ, और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो फाइनेंशियल हार्डशिप से काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी उस समय। तो इतने प्रेशर में वो समझ गए कि अब भारत पे कंट्रोल करना मुश्किल है, भारत के लोगों में क्रांतिकारी विचारधारा उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिलों में घुस चुकी है, अब हमारा रहना यहाँ पे संभव नहीं है। दूसरा, ब्रिटेन में इलेक्शन होता है 1945 में, वहाँ पे क्लेमेंट एटले जो कि लेबर पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार थे वो जीतते हैं, और लेबर पार्टी हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी इंडियंस के लिए, तो बहुत सारे वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के कॉज को वो सपोर्ट करती थी। तो क्लेमेंट एटले ने भी आने के बाद एक कैबिनेट मिशन भेजा और 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया। लॉर्ड माउंटबैटन आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय हुए इंडिया के, और सबसे लास्ट जो वाइसरॉय हुए इंडिया के वो सी राजगोपालचारी हुए। सी राजगोपालचारी इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट वाइसरॉय हुए और ब्रिटिश ओरिजिन के लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन हुए, और उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम चला और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। लॉर्ड माउंटबैटन ने जो समय के वाइसरॉय थे 15 अगस्त 1947 की तारीख क्यों चुनी ये तो मैंने आपको बता दिया, परंतु हमें यह भी देखना होगा कि वही वाइसरॉय जिम्मेदार है हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने के लिए। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे उनके दबाव में आके उनकी बात मान ली कि हिंदुस्तान का दो हिस्सा कर दिया जाए। बंटवारे की नींव लॉर्ड माउंटबैटन द्वारा रखी गई और जिसकी मांग काफ़ी समय से मुस्लिम लीग कर रही थी। हिंदुस्तान के विभाजन के लिए रेडक्लिफ को इंग्लैंड से बुलाया गया जो कि जिनको कार्टोग्राफी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और हिंदुस्तान वो कभी आए नहीं थे, ऐसे नेव व्यक्ति को इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नक्शा बनाने के लिए रखा गया। और रेडक्लिफ के ऊपर दबाव था कि 2 महीने के अंदर वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींचे, जो आज भी उस बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन से जाना जाता है। हिंदुस्तान के विभाजन के बाद रेडक्लिफ लाइन बनी और उस रेडक्लिफ लाइन के बनने के बाद मुसलमान भारी मात्रा में हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर पलायन करे और पाकिस्तान से हिंदू और सिख हिंदुस्तान की तरफ आए। इसमें काफ़ी दंगा हुआ, बहुत मारकाट हुई, बहुत लहू बहा और दोनों तरफ से बहा। फिर एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है जो पाकिस्तान होता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे अपना मनाता है। अब लोग ये भी पूछते हैं कि 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना, तो इसके पीछे की ये कहानी है कि लॉर्ड माउंटबेटन ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1945 को जापानियों का सरेंडर लिया था। तो इस डेट को कोमेमोरेट करने के लिए उन्होंने यही चाहा कि भारत की आज़ादी भी 15 अगस्त 1947 को दी जाए। तो ये ऐसी बात आती है उठ के, तो जैसे मैंने आप लोगों को रूबरू कराया, इतना फ्रीडम स्ट्रगल, इतनी लड़ाई लड़ी और इतने बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली। तो एक कविता सुना के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि मरने के बाद भी जिसके नाम में ही जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यह दिन है अभिमान का, है माता के मान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का। जश्न आज़ादी का मुबारक हो देश वालों को, फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मतवालों को। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: आपली पसंत, आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ॲप प्ले स्टोरवरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डनवरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाईट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
2: श्रोते हो नमस्कार। श्रोते हो, आजच्या आपल्या स्वरबहार या कार्यक्रमात मी रमेश पेठे आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। श्रोते हो, आपण म्हणतच असतो की जिंदगी एक ख्वाब है, जिंदगी एक दर्पण है, जिंदगी दवा है, जिंदगी इनायत है, जिंदगी बेखुदी है, जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी दर्द है, अशी नावाविध रूप घेऊन हे जीवन अर्थात जिंदगी आपल्या समोर येत राहते। तर या जिंदगीचे अर्थात जीवनाचे अनेक रंगाचे आपल्या स्वरबहार या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, जाणून घेणार आहोत। तर ऐकूयात जिंदगीला समर्पित असलेली ही सदाबहार गीतं। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस आपण ऐकणार आहात आंधी या चित्रपटासाठी लता मंगेशकर आणि किशोर कुमार यांच्या आवाजातील गुलजार यांचं गीत। संगीतकार आहेत RD बर्मण।

दंजरी पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

काला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा, कोई भी

0: तुम ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो।
1: कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
2: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसी स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?